एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह है। पातशाही दसवीं चौपाई पुन राशिश का काटा सीसा श्री अस्कित जगत के ईसा पोहपन ब्रिस्त गगन ते पई सब हिन आन बधाई दई। धन्य धन्य लोगन के राजा दुष्टन दाहा गरीब निवाजा अखल पवन के सृजन हारे दास जान मोहले हो उबारे। कव्यो बाच बेनती चौपई हमरी करु हाथ दरछा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करु प्रतपारा। हमरे दुष्ट सवै तुम काव हो आप हाथ दे मोहि बचाव हो। सुखी बसै मोर परिवारा सेवक सिख्य सवै करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करिय सब बैरन को आज संघरिय पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा। तुम है छाड़ कोई अवर न त्याऊं जो पर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख्य हमारे तारिय चुन चुन सत्र हमारे मारिय। आप हाथ दे मुझे उबरिय मरण काल का त्रास निवरिय हो जो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तु जू करियो रक्षा। राख ले हो मोहे रखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा अवतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जूथियो। जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहि हमारा। जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जच्छन उपजायो। आद अंत एकै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी। शिवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पल मुँह बद कियो। घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने कट कट की पट पट की जाने। जाबुद करख करा करतारा प्रजा तरत तब देहे अपारा। जब अकर्ख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब धार आप अपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत भेदा जाको भेव न पावत भेदा। ताको कर पाहन अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का।

कृपा दृष्ट तन जाहिन हर हो ताकि ताप तनक मह हर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह श्वस कै न कोई। एक बार जिन

कृपा करी हम पर जगमाता, ग्रंथ करा पूर्ण सुभ्राता, किल बिक सगल देखो हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता। श्री अस्तु जब भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन वांछत फल पावै सोई, दुख न तिसै व्याप्त कोई। अड़िल सुनै गुंग जो जाही, सुरस न पावई, सुनै मूढ़ चित लाई, चतुरता आवई। दुख दर्द पौ निकट, न तिन नर की रहै, हो जो या की एक बार, चौपाई को कह है। स्वैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आन्योम। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कह मत एक ना मान्योम। सिमृत शास्त्र वेद सबै, बहु भेद कह हम एक ना जान्योम। श्री

छाड़ के गहियो तुहारो द्वार बाहि गहे की लाद अस गोविंद दास तुहार। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु तं पाया सहज सेती मन वजिया वधाइया।

दीनन की प्रतपाल करै नित, संत उबार गनी मन गारै, पच पशु नग नाग निराधप, सर्व समय सबको प्रतपारै, भुखत है जल में थल में पल में, कल के नहीं कर्म विचारै,

0: आसा पूरी करे आसा जी दीवार जी, जेड़ी वहमा पार माजो कड्डे बार जी, जेड़ी वहमा पार माजो कड्डे बार जी।
1: सच वाला जेड़ा रस्ता।

0: इस कमले दिल ताई उमर गवा के समझा आईया।
1: छड देवी देवता मैं एक ताटा ओट तकाया चरना नाल लालो जी मैं

बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरे आए घर नौन त्यावै ताए। सब थाई होए सहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी। पंजां प्यारियां चौह साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वन छकिया देख चलाई तेग वाही देख के निट कीता तिन्हां प्यारियां सचारियां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सिस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखियां ते चढ़ियारियां नाल चराए गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिक्खी केसां स्वासां नाल निभाही तिन्हां दी कमाई दा ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान करके बोलो जी। प्रथमें सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित आवै चितावन का सदका सर्ब सुख होवे। जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रक्षा रियायत। देख देख फते बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नू सिखी दान कीस दान रहत दान विवेक दान मिसाह दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी दे इशनान चौंकियां झंडे बूंगे जुगो जुगा टल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत दा राखा वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जीओ श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरुधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है जी खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणियां दे माण निताणियां दे ताण नेउटियां दी ओर सच्चे पिताप वाहिगुरु धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर शब्द चौंकी सोदार रहदास साहिब जी दे पाठ जी की अरदास उपरंत गुर शब्द विचार होई शब्द चौंकी आरती जी की अरदास उपरंत कवि श्री राही सतगुरु जी गुर इतिहास दियां विचारां होईयां छे पौड़ियां आनंद साहिब जी दे पाठ जी की अरदास भुल चुक माफ करनी अगे तो सुध ते स्पष्ट गुरबाणी पढ़न विचारन कीर्तन जस करन दी दात बख्शनी दाराई संगत नूं अपने दरों घरों गुरसिखी सिदक भरोसा नाम दियां दातां बख्शनियां कड़ा प्रसादी देख सज के हाजर दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शनी करो किरपालता पावन हुक्म बख्शिश करके संगतां नूं निहाल करो सही प्यारे मेल जिन्हां मिले आप जी दा नाम चित आवै नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा गया पई अकाल की सब सिखन को हुक्म।

0: विचार
1: गावे को साज करे तन खेहे
0: गावे को जी लफ दे
1: गावे को जपे दिसे दूर
0: गावे को वेखे हादरा दूर
1: कथना कथी न आवे तोड़त
0: कत कथी कोटी कोट कोट
1: देंदा दे लेंदे थक पाहे
0: जगन जगन खाए खाए
1: हुक्मी हुक्म चलाए राहो
0: नानी विकसे वे प्रभाव
1: साचा साहिब साच नाए पाहे।

0: ना जोगी जाने रुत माहु ना कोई।
1: जा करता सिति को साजे आपे जाने सोई।
0: किव का रखा किव साला ही क्यों मरनी किव जाना।
1: नानक आखन सबको आखे एक दो एक सियाना।
0: वड्डा साहिब वड्डी नाई।

0: भुजंग पर्यात छंद नमो सर्वमान्ये समस्ति निदाने
1: नमो देव देवे अपेकी अपेवे
0: नमो काल काले नमो सर्व पाले
1: नमो सर्व काले नमो सर्व पाने
0: अनंगी अनाथ निरसंगी परमाथे
2: नमो
0: चंद्र चंद्र नमो पान पाने
2: नमो
0: नृत नृत नमो नाद नादे अनंगीय नामे समस्ति स्वरूपे
2: परमंगी परमाते समस्ति पभूते
0: कलंकन बिनाने कलंकी स्वरूपे
2: नमो राजर्गेश्वरं परम रूपे
0: नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे
2: नमो राजर्गेश्वरं परम वृद्धे
0: नमो शस्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे
2: नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता
0: अपेक्षीय परमी अभोगी अभुक्ते
2: नमो जोग जगेश्वरं परम जुगते
0: नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे
2: नमो प्रेत अप्रे देवेषु तर्मे
0: नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे
2: नमो पूपे
0: नमो दान दाने नमो मान मने
2: नमो रोग रोगे नमस्तंशनाने
0: नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं
2: नमो इष्टि इष्टे नमो तंत्र तंत्रं
0: सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी
2: अनुपे अरूपे समस्त निवासी
0: सदा सिद्धा बुद्धा वृद्ध कर्ता
2: अधो ऊर्ध्व अर्धं अंगं हर्ता
0: परं परं परमेश्वरं प्रोक्ष पालं
2: सदा सर्वदा सिद्धाता दयालं
0: अच्छेदी अपेदी अनामंग कामं
2: समस्तो पराधी समस्त
0: तेरा जोर चाचरी छंद जले है थले हैं अपीत हैं अपे हैं
2: प्रभु है अजू है अदेश है अपेश है
0: भुजंग पर्यात छंद गादे अबादे अरंदी स्वरूपे
2: नमो सर्वमान्य समस्ति निधाने
0: नमस्त्वंग निर्नाथे नमस्त्वंग परमाथे
2: नमस्त्वंग गंजे नमस्त्वंग पंजे
0: नमस्त्वंग काले नमस्त्वंग पाले
2: नमो सर्व देशे नमो सर्व पेशे
0: नमो राज राजे नमो साज साजे
2: नमो शाह शाहे नमो माह माहे
0: नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते
2: नमो रोख रोखे नमो शोक शोके
0: नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे
2: नमो सर्व जीतं नमो सर्व पीतं
0: नमो सर्व ज्ञानं नमो परम तानं
2: नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व जंत्रं
0: नमो सर्व दृशं नमो सर्व कृसं
2: नमो सर्व रंगे त्रिभंगी अनंगे
0: नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे
2: अखिजे अपिजे समस्तं प्रसीजे
0: कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी
2: सदा सर्वदा हृदय सिद्धं निवासी
0: तत्पर्चन त्वे प्रसादं वृत कर्मे अनवृत तर्मे
2: अखल योगे अचल भोगे
0: अचल राजे अटल साजे
2: अखल कर्म अलख कर्म
0: सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता
2: सर्वं पाने सर्वं माने
0: सर्वं प्राण सर्वं त्राण
2: सर्वं भुक्ता सर्वं जूता
0: सर्वं देवं सर्वं पेवं
2: सर्वं काले सर्वं पाले
0: रुआल चंद वह प्रसाद आद रूप नाथ मूर्त जोन पुरख पार
2: सर्व मान त्रिमान देव पेवा उदार
0: सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपुन काल
2: तत्र विराजे अतूत रूप साल
0: नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख
2: मूर्खोदार मूर्त जो नाद सेख
0: बेस और न बेस जाकर रूप रेख न राग
2: जतर ततर दिशा विशाओ फैलियो अनुराग
0: नाम काम बहीन पेकत ताम होने जाहे
2: शरमार्च रत्मार्च दे मानता है
0: एक मूर्त अनेक दर्शन कीन

0: सन प्रणाम निर्भय निकाम
1: अद्भुत प्रचंड मृत गखंड
0: अलिस्य करम अदृश्य धर्म चाचरी चंद त्व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंकर नामे अकामे भुजंग प्रयात छंद चतर चक्र कर्ता चतर चक्र हर्ता
1: चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने
0: चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती
1: चतर चक्र पाले चतर चक्र काले
0: चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे
1: चतर चक्र मानिए चतर चक्र दानिए
0: चाचरी चंद न सतराय ना मित्राय ना परमंग ना पितराय
1: ना कर्मम ना काय अजन्म गा जाए
0: ना चित्राय ना मित्राय परे है पवित्राय
1: अतिशय अदिशय अदृश्य अकृश्य
2: भगवती चंद प्रसाद कत्ते किया चिज देसे किया बिज पेसे
1: किया कंज करमे किया पंज परमे
2: किया बिज लोके किया दित सोके
1: किया तूत भरने के प्रभूत करने
2: राजंग सभा है कि तरमंग तुजा है
1: किया शोक भरने के सर्वा परने
2: जगतन तिथिये कि छत्रंग छत्रिये
1: के ब्रह्म स्वरूपे के अन

0: गायब है
1: के
0: कारण कुनेंद है के रोजी दहेंद है
1: के कर्मं करीम
0: के सर्वं कली है के सर्वं दली है
1: के सर्वत्र माने है के सर्वत्र दाने
0: के सर्वत्र गौणे के सर्वत्र पौणे
1: के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेशे
0: के सर्वत्र राजे के सर्वत्र साजे
1: के सर्वत्र दीने के सर्वत्र लीने
0: के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो
1: के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेशे
0: के सर्वत्र काले के सर्वत्र पाले
1: के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता
0: के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी
1: के सर्वत्र काजे के सर्वत्र राजे
0: के सर्वत्र सुख के सर्वत्र भूख
1: के सर्वत्र त्राण के सर्वत्र प्राण
0: के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेशे
1: के सर्वत्र माने सदैव प्रदान
0: के सर्वत्र जापिए के सर्वत्र थापिए
1: के सर्वत्र पाने के सर्वत्र माने
0: के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र
1: के सर्वं कलिमे के परमं फहिमे
0: के आकल अलामे के साहिब कलामे
1: वजूए तमाम रजू
0: हमें सुल सलामे सली खुदमे दामे
1: गनीमुल शिकस्ते गरीबुल परस्ते
0: बलिदुल जमान काने जमीनुल जमाने
1: तमीजुल तमामे रजूअल निदाने
0: हरीफुल आजी में रजाए यकीने अनेक
1: तरह के पेद है पंगे
0: अजीजुल निवाज है गरीमुल खिराज है
1: रूपत स्वरूप है त्रिमुगत में भूत है
0: प्रभुक्त प्रभा है संयुक्त सुधा है
1: दैवं स्वरूप है पेदी अनूप है
0: समस्त उपराज है सदा सर्वसाज है
1: समस्त सलाम है सदैव लकाम
0: है निर्भास स्वरूप है अगाध है अनूप है
1: अगाध रूपे अनाथ स्वरूप
0: अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिका में
1: त्रिभगन त्रिपादे गंजे गादे
0: सुबन सर्पागे सुसर्पा अनुरागे
1: भगत स्वरूप है चिचे छूते
0: के नरकम प्रनाश है पृथुल प्रवास है
1: रूपत प्रभा है सदैव सदा है
0: विभुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है
1: रूपत सदा है विभुक्त प्रभा
0: है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है
1: श्री चंद पंग है अनंग है अलेख है अपेख है
0: अकर्म है अपर्म है अनाद है जुगाद है
1: अजय है अभय है अभूत है अदूत।

0: एक है, अडा है, अगा है,
1: अचंप है, अगंप है, अनिल है, अनाद है,
0: अनित है, सुनित है, अजात है, अजाद है,
1: चरपट क्षमता प्रसाद,
0: सर्वंगता सर्वंगता,
1: सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता,
0: सर्वंगता सर्वं कर्ता,
1: सर्वं प्राण सर्वं त्राण,
0: सर्वं कर्म सर्वं धर्म,
1: सर्वं जूता सर्वं मूता,
0: सावल चत्व प्रसाद, नमो नरक नाशे सदैवन प्रकाशे,
1: अनंगं स्वरूपे अपंगं प्रभूते,
0: परमातं परमाते सदा सर्वसाते,
1: अगाध स्वरूपे निर्बाध प्रभूते,
0: अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे,
1: सर्वंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे,
0: न पुत्रे न सत्रे न मित्रे,
1: न ताते न माते न जाते न पाते,
0: साकं सरीके अमितो अमीके,
1: सदैवं प्रभा है अजय है अजा है,
2: प्रसाद के जाहर सूर्य के हाजर हुजूर है,
1: हम ईश्वर सलाम है, समस्तुल कलाम है,
2: दिमागे के उसन चराग है,
1: के कामल करीम है, के राजक रहीम है, करीमुल कमाल है, के उचनल जमाल है, हरीफुल शिकन है, रियाचल फिकन है, अगंजुल करीम है, रजाय करीम है, के नरकम प्रनाश है, बैस्तुल निवास है, तमामुल तमीज है, समस्तुल अजीज है, अजेशुल अलेख है, अमेशुल अपेख है, करीमुल कमाल है, के जुर्रा जमाल है, के अजब स्वरूप है, के अम्तो प्रभूत है, के अचलन अनंग है, के अम्तो अपंग है, हर भर अखंड, हर नर प्रपंच, हर नर अखंड, भर नर अमंड, गुण गण प्रणाम, जल थल मुदाम, उपमाय अपार गत में तुदार, जल थल महंत, दिस बीज बेअंत, अजान बाहु एक के सुदाहु, खल खंड ख्याल, गुर भर अकाल, अंशज गाता जितना

पारते पर हैं गुणा कर हैं अत्ता कीर्त है अमृता अमृत है अत्ता कीर्त है तरनी त्रित है अत्ता कीर्त है अमृता अमृत है नायक है खलकायक है निपनायक है

0: नमो राज राज नमो इंद्र इंद्र
1: नमो अंधकार नमो तेज तेज
0: नमो बृंद्र बृंद्र नमो बीज बीज
1: राज संताम संसांत रूपे
0: नमो परम तंतंग तंतंग स्वरूप
1: जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञान
0: नमो मंत्र मंत्र नमो ध्यान ध्यान
1: जुद जुद नमो ज्ञान ज्ञान
0: नमो पूज पूजे नमो पान पान

0: भूते वाहे गुरु जी की फतेह।
1: प्रसाद सवैये पातशाही दसवीं श्रावक शुद्ध समूह सिद्धान के देख फिरयो कर जोग जति के
0: सोर श्रार्दन शुद्ध सिद्धातक संत समूह अनेक मति के
1: देश को देख रहे हो मत को न देखियत प्राण पति के
0: श्री भगवान की पाए कृपा उनके करती बिने करती के
1: माथे मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सवारे
0: को तुरंग कुरंग से को तद पौन के गौन को जात निवारे
1: जान के नियामत शीस न जात बिचारे
0: एते पे तो कहा प्रभुपति अंत को ना गई पाए पदारे
1: फिरे सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे
0: गुंजत घोड़ गजान के सुंदर हिंसा दिया राज हजारे
1: भगवान के पूपत कौन गने नहीं जात बिचारे
0: श्री पद श्री भगवान पजे बिने अंत को अंत के ताम सिदारे
1: संजम नेम अनेक विशेख है
0: वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जबान सबान के पेखा
1: जति जत धार सब ऐसु विचार हजार के देखे
0: श्री भगवान पजे बिन भूपते एक रति बिन एक न लेख
1: सिपाह तुरंत दुबा सुसाज सनाह दर जान दलेंगे
0: पारिक मान परे मन में कर पर्वत पंख लेना लेंगे
1: और हरीन

0: किधर भछैया
1: तोर देश मलंद मवासन माते गजान के मान मलैया साहेब श्री सबको सिर नायक जाचक ने एक सो एक दवैया
0: देव फनिंद निसाचर भूत भविख भवान जपेंगे
1: जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे
0: प्रतापन बाढ़ जय धुन पापन के बहु पुंज खपेंगे
1: सा समूह पर सन फिर जग सतर सवे अब लोक छपेंगे
0: मानव इंद्र गजिंद्र नराधप जौन त्रिलोक को राज करेंगे
1: कोट स्नान गजा एक दान अनेक स्वयंवर साज भरेंगे
0: सचिपत अंत फसे जम फास परेंगे
1: ये नर श्री पद के पुरा सह पग ते नर फेर न दे तरेंगे
0: चन मूद के बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो
1: नाग प्रियो लिए सात समुद्रन लोग गयो पर लोग गवायो
0: आस कियो बिख्यान सु बैठ के ऐसे ही ऐसे सु पैसे बितायो
1: सात कहो चुन लियो सबे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो
0: काहुले पाहन पूज धरियो सिर काहुले लिंग गरे लटकायो
1: काहु लिखो अरवासी दिशा में काहु पिशा को सिर

0: कृपा
1: हमरे दुस्सबे तुम काबू आप आदे मोए बचाबो
0: सुखी बसेबो रो परिवार सेवक सिख सब है करता रा
1: मोर अच्छा निज करते करिए सब बैरन को आज सगरिए
0: पूरन होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा
1: तुम्हें छाड़ कोई अवन ना त्याओ जो बचाओ सो तुम ते पाओ
0: सेवक सिख हमारे तारिए चिन चिन सतर हमारे मारिए
1: आप आदे मुझे अबरिए मर काल का त्रास दुवरिए
0: पूजो सदा हमारे पच्चा श्री
1: राख ले मैं रखन हारे साहिब संसाए प्यारे
0: तीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता
1: काल पाए ब्रह्मा भवतरा काल पाए शिव जीव अवतरा
0: काल पाए कर बिजन प्रकाशा सकल काल का क्या तमाशा
1: जमन काल जोगी शिव की हो वेद राज ब्रह्मा ज्योति हो
0: जमन काल सब लोक सवारा नमस्कार है काहे हमारा
1: जमन काल सब जगत बनायो देव दैत जचन पुजायो
0: आदंते के अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा
1: नमस्कार।

0: संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी।
1: एक एक की पीर पछाने, कट कट के पट पट की जाने।
0: जब कर करा कर तारा, प्रजा तर तब दे अपारा।
1: जबा करत करत हो कबू, तुम में मिलत दे थर सब।
0: जेते बलन से सब तारे, आप अपनी बुझ चारे।
1: तुम

करियम पर जगमाता ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता श्रीय सुचा पे दयाला पूर्ण करा ग्रंथ काला सुने गंगा।

0: होत है कोई पूछो विवे किया जाए।
1: अनेक जुनी परमा वै बिन सतगुरु मुक्त ना पाए।
0: फिर मुक्त पाए लाख जनी सतगुरु शब्द सुनाए।
1: कहे नानक विचार देखो बिन सतगुरु मुक्त ना पाए।

0: सख्त आप पाए कह करता पे हुकम वरताए
1: हुकम वरताए आप वेखे गुरमुख से बुझाए
2: तोड़े बंधन होवे मुक्त शब्द मन बसाए
0: गुरमुख जिसनु आप